ये मुझे है मामा, ये मुझे सत्य कोने, ये मुझे डालते मम्म के में तीने नटे को सादे मम्म के में तीने नटे मम्म के में तीने नटे सादे टे मम्म के